0: प्रीत बनाई राजपद रहत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्यो कहां गवार
1: अजनु समझ रच दिगर्या नाहनी अजनु समझ

0: बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी बरन सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण ले हृदय बसावो तव परम गुरु नानक गुण गाओ तास चरण ले हृदय बसावो तव परम गुरु नानक गुण गावो सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई पाई गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अजी कहिंदे हन जिस नूं किसे कम दा चज ना होवे तरीका ना होवे जीवन दा ढंग ना आउंदा होवे गुरु की मर्यादा विच चलण तों प्रतिकूल जिहड़ा इंसान है उस दा नाम कुछ अजी भाव खोटे अवगुणा नाल भरी होई ते शुभ गुणा तों खाली मंज कहिंदे हन मैनू हे वाहिगुरु मैं तां मंज
1: मंज कुचजी अमावन डोसड़े
0: मैं कुचजी हां मैनू मत नहीं है मैनू अकल नहीं है जिवें भाई गुरदास जी लिखदे हन होए अपराधी गुणे गार हां बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हां पर घर जो हंदा इस शब्द विच वी अवगुण गिने हन के इन्हां वीआं अवगुणा दे मैं संयुक्त हां हे प्रभु मेरे ते दयालता करो इन्हां अवगुणा तो मैनू बचा लवो होयो अपराधी गुनहगार हां बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हां पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती आ किरत कण मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बखसंदा वी अवगुणा नाल मैं भरपूर हां पर तेरी शरण विच आया हां। संत शमेर सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन लिखिया होया पिछले दिनी पुस्तक छप गई है। उन्होंने अपनी वलों निम्रता सतगुरु जी के चरणों विच अपने अवगुणा की लिस्ट इस प्रकार रखी है। कामी अकुटल कूर कपटी अकिरत घणी कटु काल ही कलंकी कली काल के अधीन हूं। हे कलगीधर पिता मैं टेढ़े मन वाला हां मन विच मेरे कपट है कीती नू जानदा नहीं इस वास्ते अकिरत घण हां। कामी अकुटल कूर कपटी करित कणी कटु काल ही कलंकी कली काल के अधीन हूं। खोटो खाल खामी खूब खंडत खराब करो खालक न जान्यो खल्यो खाल न प्रवीण हूं। ਗਾਫਲ ਗੁਸੈਲ ਗਮ ਰੂਰੀ ਭਰਿਓ ਗਿਆਨਹੀਨ ਗਾਮੀ ਗਨਿਓ ਔਗਨੀ ਗੁਨਾਨਨ ਮੈਂ ਪੀਨ ਹੋ ਘਰ ਕੇ ਨ ਕਾਮ ਕੋ ਆਰਾਮ ਕੋ ਨ ਨਾਮ ਕਛੂ ਰਾਮ ਮੋਹਿ ਤਾਰੋ ਤਬ ਜਾਨੋ ਨਾਥ ਦੀਨ ਹੋ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰੋ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ। ਉੱਤਮ ਭਗਤੇ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਚੱਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਡੋਸੜੇ ਮਹਿਣੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਅਮਾਵਣ ਮਹਿਣੇ ਮਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ।

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गो मैंने पृथ्वी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्ति

शिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू ले जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ए बचन अपने पले बना

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बालके त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच गृहस्थी होवोगे, फिर त्वाड़े कार्य ओ नारायण आप प्रगट होवेगा।

ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति, पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन। ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है, कि मैं पिछले

मैं अरदास की थी, मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरी गोद में खेड़े।

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दिया बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नू गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है

जेड़े बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते कोई समझ लैन उन्हां दा दान पुन भी सफल नहीं होता। जेड़े माता पिता की सेवा नहीं करते उन्हां दा कीता होया दान पुन तीर्थ यात्रा पाठ पूजा भी सफल।

अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धियां पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद ओ ही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धियां पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद ओ बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धियां पुत्रां दे हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण

ताकि जद बच्चे वड्डे होण ते उन्हां दे मनां विच सेवा दी भावना होवे, ओ परमेश्वर दे नाल प्यार करन और नाल अपने माता पिता का भी वो आदर मान करन। कई जगह असी गलत हो जाने हैं क्योंकि जे असी नेक काम नहीं करते, बुराइयां करते हैं ते फिर बच्चियां तो असी चंगे काम की किवें उम्मीद कर सकांगे। असी आप भी चंगे होइए और बच्चियां नूं भी चंगी सिख्या देइए ताकि स्वर्ग लभण की लोड़ ना पवे।

अंदर आ जा, अंदर आ जा। आ गया सच्चे पातशाह ने, आगता चीज में देख रही है, टक रही है। तेरा नंदलाल दिल कसीफ है, दिल गलीज है, दिल मेरा है। ये सुथरा नहीं है, साफ नहीं है, पाकीजा नहीं है। इसलिए इसन पाकीजा कर, हाथ जोड़ के आखन लगे मेरे मालक अपने योग बना लो, जिदा का तुम चाहिए बना लो। सतगुरु जी मैनु कोई तरकीब दस दो, सुझाव दे दो। सच्चे पातशाह कहन लगे मेरा खालसा बैठा ना, मेरा प्यारा खालसा, प्रभु का प्यारा खालसा बैठा ना। नंद लाल तेन एक जुगत दसदा हां, लंगर विच चले जा, लंगर विच जाके मेरे खालसा दे जिन्ने वधिया बर्तन थाल गिलास कोले मन ला के साफ करेगा, और जिन्ना वधिया करेगा उन्ना तेरा कासा है कलम जल्दी मुरबर हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। बस इसने गल पल्ले बन ले, सीधा सीधा हूं सतगुरां दे लंगर विच चले गया। जानदिया इसने अपने बस्तरां की कोई परवाह नहीं की थी, अपनी बुजुर्गी वाल नहीं तकिया, ये बर्तन साफ करन लग पिया। कई दिन लंगर, कई दिहाड़े गुजर गए, कई दहाके गुजर गए, इस लंगर की सेवा कर दिया, साल गुजर गए। एक दिन एक व्यक्ति ने आके आख्या आगरे तू इतने नंदलाल होना कितने, खालसा जी तुसी वेख्या ही नंदलाल, सिंह साहब तुहानू कितने पता ही नंदलाल का। आखन लगे गुरु ने एक फरमान कर दिता, हुक्म कर दिता, लंगर विच होवेगा जाके वेख लो। बुजुर्ग ने जाके वेखे ना तो लंगर विच बर्तन पिया साफ करे नंदलाल, गिट गिट उसते सुआह चढ़ी हुई, जूठा चढ़िया हुई खालसे दिया। पर गुरु का बचन उसने पल्ले बन लिया कि जिन्ने वधिया बर्तन साफ करांगा मन उन्ना वधिया साफ उजला हो जाएगा। इसलिए हुण ये गल घट करता है, बचन घट करता है, बर्तन ज्यादा साफ करता है। उस व्यक्ति ने मोढ़े हाथ ला के आख्या नंद लालो, नंद लालो, ये बोले ना। आखन लगे मैं पुछदा जी तुसी नंद लालो, बोलते नहीं। कहन लगा जिस दिन का मैं गुरु दर घर विच आ गया हां, मैनू इस गल की सोझी पै गई है कि बहुता बोलन चखण होए, बिन बोले जाने सब सो, इसलिए मैं बोलदा। नंद लाल कोई ते गुफ्तू कर, कोई ते बचन कर। इसने पिछले मुंह करके उस बुजुर्ग आगरे को आए वालों कहन लगा हमें फुर्सत नहीं मिलती किसी से बात करने की, हमें फुर्सत नहीं मिलती किसी से बात करने की, ख्याल यार अपना हर वक्त मेहमान रहता।

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिलके पह जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नु सग कहा, कुत्ता कहा, आखन लगा तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हाँ। नंद लाल उसे सुन ले तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नु इन्ने प्यारे होंगे ने कि छेज से चढ़ जाते, हो बाबा मैनू हाल ये अवसर प्राप्त नहीं होया, ये मौका नहीं मिले तो मैं गुरु गोविंद सिंह जी की छेज से बैठ मा। नंद लाल आगरा तो व्यंग पदार्थ सन तेरे खाण पीण वास्ते, इतने की मिलता है, इतने की मिलता है। ते नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजद विच आके, बड़ी मस्ती विच आके

द्वारे विच सोने में लपेटी हाथ चौबन ही फड़ी रही, पेशी दर पेशी अते मिसल हजार रही, खेल गयो खेली।

ते हर वेले शराब दी मस्ती विच गुट रहना जुल्म दा होने दुख देना प्रजा नू। प्रजा दा हर जीव अरदास करदा है खुदावंद करीब जां तां इनू चुक लै

सलामत अपने गुरु दे चरणा विच आ गया ते चरण पकड़ ले महाराज मैनू सिमरन दी दात दियो कर देवो मेर नाम जपदा रहा तेरा जी दुनिया है मुसाफिर खाना रहन दा बसेरा जी।

0: ताकृति धर्म धृताकृति देम धरना सद्र दानी दानी तुम दानी तलल तुम धरना सद्र दानी दानी तुम दानी तलल तुम धरना
1: तक तक तक तक धरी कर धरी कर तक धरी कर तक त्राम किरता किरता के तक तक धरी कर तक धुम किरता कर धरी कर धा धरना धरना धरना
0: सद्र दानी दानी तुम दानी तलल तुम धरना दानी दानी तुम दानी तलल तुम धरना बाबा तद्र दानी दानी तुम दानी तालल तुम धरना
1: संगीत भुजंग प्रिया छंद जागर दंग नागर दंग बागर दंग बाजे गागर दंग गाजे महा गाजे गाजे कागर दंग पीरंग कोकंग कड़ाकंग कागर दंग काती कटारी कड़ाकंग धरना धरना धरना तद्र

0: दगड़ी धर्म देवांग दगड़ी देम धरना दगड़ी धर्म देवांग दगड़ी देम धरना दगड़ी धर्म देवांग दगड़ी देम धरना दगड़ी धर्म देवांग दगड़ी देम धरना
1: दगड़ी दानी तुम दानी ताल तुम धरना दगड़ी दानी तुम दानी ताल तुम धरना दानी दानी तुम दानी ताल तुम धरना
0: तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी तुम दानी दानी दानी तुम दानी तुम दानी
1: ताल तुम गिरना गिरना तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी ताल तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी ताल तुम गिरना तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी ताल तुम
0: बागड़ी बिकते मैं बागड़ी तुम गिरना बगड़ी बिकते वांग दगड़ी तोम दिरना तोम तोम तोम दिरना तोम तोम तोम दिरना
1: तोम दिरना तोम दिरना।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखा दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यो लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सागर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साढ़े अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾਂ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਦ ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
मुहि दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है। जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तां इहो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है। किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों ने। वो पक्का मंगता है ते निश्चे वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मल लिया है, तेरी दहलीज मल ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चा हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा एक जगह आख्या टीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत टीठ करम। वाहिगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत टीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासां करदे जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत टीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत टीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदों तक कई बारी तेनू शक्कां शकूकां दा शुभार दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपदी तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा तार लिया मोहे दूजे